0: Oh, qui c'est qui a coupé là?
1: Ek khamosh putli si kaya jo bahut chali aur chalti rahi aur chalte chalte aa baithi vah jhuki kamar ganga tat par. घोर अंधेरे में लिपटी थका बदन बेचैन सा मन लहरों की आहट

इस जीवन के लंबे पट पर प्रहार समय के सहती रही। दूर शून्य में जुगनू जैसा एक पखेरो उड़ता दिखा, शायद कोई आस जगी, उठकर लंबी सी